0: आज भी इस गोल डेली लो फिट रहो।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
2: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार।
4: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
6: दिस इज द साउंड ऑफ योर क्लाउड बिल एंड दिस इज द साउंड ऑफ इट गेटिंग रीइंबर्स्ड। Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
7: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz Cash.
8: 100 FM।
9: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: Cool King।
11: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
12: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
13: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
14: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
13: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
15: And तूफान है, हर जीत की पहचान है ये।
14: And
16: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
17: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
18: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
19: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
20: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
21: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
22: ہماری ذمہ داری ہے۔
23: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
18: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
24: Us on facebook.com/fm247365
25: fm247365
24: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
0: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
3: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समीहा। और आज हम बात कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे जिंदगी की रोजाना कौन सी छोटी छोटी बातें जो आपको खूबसूरत लगती हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको ये बहुत ही अहमकाना सवाल लगेगा, क्योंकि सुबह के वक्त तो आपको कराची तो वैसे खैर मुश्किल हो गया शहर में जीना, और सुबह के वक्त तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि इसी शहर के अंदर कुछ बहुत सारे खूबसूरत लोग भी रहते हैं हमारी तरह, और मतलब कि प्यारे प्यारे बच्चे भी रहते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत होपफुल हैं। तो उन लोगों के लिए हमें भी थोड़ा सा खूबसूरत और थोड़ा सा होपफुल होना चाहिए। अरे खूबसूरत अब ज्यादा भी हो सकते हैं, मसला नहीं है। ऑल राइट, और आप लोगों के पैगामात हमारे पास हैं। उमेर अशरफ और एनजीक का भी मैसेज आ गया है, और एनजीक जो है वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, और एनजीक से मैं यही कहूंगी कि एनजीक टॉपिक के बारे में कुछ कहें तो सही, और होपफुली यू आर डूइंग वेल। और उमेर अशरफ कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम सैयद उमेर। कल अच्छा छुट्टी, कभी कभी जाना पड़ता है शहर से बाहर। अच्छा वो कह रहे हैं मुझे अपने दिन से जुड़ी हर उस चीज से प्यार है जिससे मुझे कोई न्यू एनर्जी मिले या कोई न्यू लर्निंग। वेरी नाइस, हमें भी बता दें कि किस चीज से आपको लर्निंग मिलती है और एनर्जी मिलती है, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख कर अपनी जिंदगी में इन चीजों का इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास नजीर खोसो और सोबतपुर बलूचिस्तान से मैसेज आया हुआ है, और मुमताज अली कंभर, और लोकल किसी का नहीं है मेरे पास, सारे बाहर के लोग हैं। अच्छा, और तो हमारे पास आपका मैसेज है, माँ का प्यार फजर से पहले उठकर हमारे लिए चाय और दुआ बनाना। चाय और दुआ बनाना, माँ का प्यार स्कूल जाते वक्त बैग खाली चेक करके खाना पानी की बोतल रखी है। और नजीर खोसो हम आपके बात करें, आप तो बिल्कुल बच्चों की बातें कह रहे हैं। माँ का प्यार हमेशा ही आपके लिए एक रोजमर्रा की बेहतरीन चीज है, खासतौर पे जो अम्मियां फजर की नमाज पढ़कर दुआ कर रही होती हैं और बच्चों पे फूंक रही होती हैं जाने से पहले, और ये बहुत अच्छा लगता है। और नानी से, जब हमारी नानी हमारे साथ रहती थी तो हमेशा मैं नानी से मिलकर सर पे हाथ रखवा कर जाती थी। तो ये जो बड़े होते हैं हमारा सरमाया होते हैं, तो ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारी रिचुअल्स हैं। और सुबह के वक्त बहुत खूबसूरत हो सकती है जिंदगी, अगर हम थोड़ा टाइम मैनेज करें, अगर हम नमाज के लिए टाइम निकालें, एक्सरसाइज के लिए जो है टाइम निकालें, खुद को खूबसूरत बनाने के लिए टाइम निकालें, क्योंकि तो ये टाइम बड़ा प्रेशियस है। और अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छे नोट पे हो तो बाकी दिन जो है उसको झेलने का हौसला आ जाता है। खैर, ये हमारी बातें हैं, आप बताएं आपकी क्या बातें हैं, हमें मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या @RJSamiha इंस्टाग्राम पे। और एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसको भेज देंगे 3636 पर। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें हैं जो लाइफ को टॉलरेबल जीने लायक खूबसूरत बनाती हैं।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: जी यहाँ पे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं कि लाइफ के अंदर आपको छोटी छोटी कौन सी प्यारी चीजें लगती हैं, और प्यारी चीजें हमारी खूबसूरती हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है। बड़ी खूबसूरती हम देखें या फिर खाने के अंदर, उसको टेस्ट के अंदर मजेदार खाना खाएं, या किसी की आवाज हो या म्यूजिक सुने, तो ये सारी चीजें जो हैं वो खूबसूरती की अलामत है। और अपनी जिंदगी में खूबसूरती जरूर शामिल कर रखें, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में खूबसूरती नहीं रहेगी तो आप अजीब व गरीब सी मखलूक बन जाएंगे। और खूबसूरती का ताल्लुक पैसे से भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत सारे पैसे होने के बावजूद भी इंतहाई खूबसूरत ही रखते हैं। वरना आप सोचें, खवातीन तो खैर अपने आप पे पैसे खर्च करके अपने आप को खूबसूरत बना ही लेती हैं किसी न किसी तरीके से, वो भी हर खातून नहीं, कुछ खवातीन को बड़ा शौक होता है। और लेकिन कुछ लोगों के पास जितना ही पैसा है माठे के माठे ही रहते हैं। खैर, हम बात करें खूबसूरती की, आप बताएं कि अपनी जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनाते हैं डेली बेसिस के, आपको कौन सी चीज बड़ी प्यारी लगती है सुबह का वक्त। और जो लोग सुबह उठने को पसंद करते हैं, वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उनको कोई बहुत ही खूबसूरत मनाजर अपनी आंखों से देखते हुए जाते हैं। जैसे परसों की बात है कि आई वॉज जस्ट, मैं मॉर्निंग वॉक जो सिर्फ 5 मिनट की थी, क्योंकि मुझे जाहिर रेडियो पर जाना होता, एंड आई सॉ दिस बर्ड, ब्यूटिफुल बर्ड, जिसके ऊपर से व्हाइट और नीचे उसके पैर एकदम लाल लाल नजर आ रहे थे। तो मैंने कहा हो, मॉर्निंग वॉक का फायदा हो गया, इतना हसीन नजारा देखने को मिला। और इसके अलावा भी मॉर्निंग वॉक के बड़े अच्छे अच्छे फायदे हैं, मोहल्ले वालों पे आपकी नजर रहती है। सेकंड, बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं आपको, मतलब कि यू नो कैसे मैं लाखों रुपए कमाऊंगा या करोड़ों रुपए, यू नो। खैर, मॉर्निंग वॉक इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ, और जब आपकी सुबह अच्छी हो, हरियाली में हो, तो फिर आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है कंपेयर टू दोज पीपल जो आखिरी टाइम पे उठते हैं सोते में और उनको जाना होता है ऑफिस के लिए, लेट हो रहे होते हैं। तो खैर, ये हमारी बातें हैं, आपकी क्या बातें हमें बताएं, हमें मैसेज करें, अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर, या मुझे मेरी फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का, और ये जानने का कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी डेली लाइफ को खूबसूरत बनाती हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur
2: bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.

0: डेली लो फिट रहो।
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।

0: मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: This program is brought to you by Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी।
0: And अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें। And

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: ఆశ బీస్ట్ గోల్ ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम.
3: इंड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैस कैश.
5: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है. पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. AI, SaaS, FinTech, HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है. टीयर 1 के लिए $6,000 और टीयर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट. प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026. रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें. ignite.org.pk पर.
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
2: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
7: एंड

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश। कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: This program is brought to you by
3: Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी।
6: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड

facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
2: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
4: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
0: This program is brought to you by
5: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी
3: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: And तूफान है हर जीत की पहचान है.
0: And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा
4: खालिस अज्जा भरोसे मन शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
6: facebook.com/fm247365
7: बैन-उल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ. ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पालक से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर शिरकत करेंगे तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सर दर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें पानी की टंकियों को ढांप कर रखें गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें याद रखें एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है डेंगू से बचाओ आपकी एहतियात आपकी हिफाजत
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
4: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं इन सर्विसेज में रिंगटोन्स ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स मिस्ड कॉल अलर्ट इंटरनेट बंडल्स गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं ताहम बाज़ औक़ात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है जब बैलेंस से रकम कट जाती है जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिक की तस्दीक जरूरी होती है जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है याद रखें पीडीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देगा अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए अगर आपके साथ ही ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं शिकायत के अंदराज का तरीकेकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaints.pta.gov.pk पर जाएं शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें जिनमें नाम शनाख्ती कार्ड नंबर राब्ता नंबर शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाए याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर्ड न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें इसके बाद शहर सर्विस फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ڈی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم. پی ڈی اے
5: کے مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: कोकिंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
0: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
3: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज। यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामा।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرط یہ کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھیں.

0: यस एवरीवन, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो चुका है तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे तरीका कार कि कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीके कार को फॉलो करें और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनें। अपने हाल हवाल बताएं, कैसा गुजर रहा है आप सबका दिन और आप सबकी जिंदगानी। आई होप सो कि अच्छी गुजर रही होगी, अच्छी गुजर रही है, मजे की गुजर रही है, बोरिंग गुजर रही है, अब बहुत सारा वर्क प्रेशर है, वर्क लोड है, क्या सूरत हाल है भाई। तो इस हवाले से भी आप हम लोगों तक आगाही फराहम कर सकते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ी हावनों आप हमें दे सकते हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, और भी हमारा और आपका साथ भी कायम रहेगा क्योंकि हम आपके साथ 12 से 2 के दरमियान होते हैं। एंड यस वी आर टुगेदर। और इसी के साथ साथ जो है वो ये है कि ब्रेक भी हमारा करीब है और हमारे पास मैसेजेस भी मौसूल हो गए हैं और लोगों की शिकायत शुरू हो गई है कि लेट क्यों हो गई। हाँ, आज वाकई में बहुत लेट हो गई, काफी ज्यादा लेट हो गई अनएक्सपेक्टेडली, बिकॉज बस हो गया यार लेट, चाहा नहीं था लेट होना, बस ये तो होता है। तो इस वजह से आज मैं लेट हो गई हूँ, बट नो वरीज, आई एम विद यू गाइज। और आपके मैसेजेस को भी शामिल करेंगे, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल क्योंकि आ गया है मेरे पास ब्रेक जिससे हमें करना है शामिल। तो ब्रेक के बाद आते हैं वापस, कहीं मजा आएगा, विल बी राइट बैक।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 1 PM। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum Pakistan.
3: Azan-e-Zuhr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची और उसके मजाफात में अजान जुहर का वक्त हुआ चाहता है।

0: 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

Yes everyone, तो प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रिवायत हो गई है कायम। अब हम आपसे जानेंगे कि भाई आपके लंच में क्या है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, या फिर आज हिम्मत नहीं है और कुछ बाहर से मंगवाने का इरादा है, तो भाई आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं। और इसे बताने के लिए भी आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीके कार को फॉलो करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो लंच में क्या मौजूद है हमें जल्दी जल्दी बताएं भाई। बिरयानी, निहारी, कबाब, कढ़ाई या फिर कुछ और है, दाल चावल है, कोई सब्जी है, कोई भुजिया है, पूरियां हैं, पराठे हैं, व्हाट्स इनसाइड योर लंच भाई। तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और अपना लंच हमसे शेयर करें। हम आपके मैसेजेस का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। और अभी मैं जिक्र लंच कर ही रही थी ना, तो उसी के साथ साथ मैंने आज एक दिन पढ़ा जिसे पढ़ने के बाद मुझे बड़ी हंसी आई। और पता है वो दिन क्या है? वो है नेशनल डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन ऑमलेट। लाइक व्हाट, ये भी कोई दिन है? और ये बड़ा ही मजे का दिन है, यानी कि इस दिन में ये कहा जा रहा है कि एक ऑमलेट में सारे अंडे ना डालें, ये दिन मनाया जा रहा है। मतलब लाइक व्हाट यार, ये क्या बात हुई? इसका कहने का मकसद यह है कि भाई कुछ अंडे आप बॉईल करके खा लें, कुछ फ्राई करके खा लें, लेकिन एक साथ ना सारे आपने आमलेट में नहीं डालने हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा ही आज का दिन कह रहा है जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड दिस इज सो फनी। सो प्लीज आप लोगों से भी हम ये कहेंगे कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन ऑमलेट। तो एक ऑमलेट में सारे अंडे आपने नहीं डालने हैं, ऐसा आज का दिन कह रहा है। तो बाकी अंडों का आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें जरूर बताएं भाई आपके लंच में क्या है। हम आपके मैसेजेस का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। जब तक आप हमें मैसेज करके बता रहे हैं, हम चलते हैं ट्रैक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद। तो बताएं क्या है आपके लंच में।

0: यस एवरीबॉडी, सो आई एम बैक। और भाई लंच में क्या है इसका हम कर रहे हैं आपका शिद्दत से इंतजार जानने के लिए कि आपके लंच में क्या मौजूद है। और भाई मैसेजेस भी आ चुके हैं हमारे पास बहुत सारे, जिसे हम करेंगे एक एक करके शामिल, बट अनफॉर्चुनेटली अभी शामिल करने नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास ब्रेक मौजूद है क्यू में। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से ब्रेक को शामिल करते हैं, एक छोटे से ट्रैक के साथ वापस आते हैं, और आते ही साथ ना सबसे पहले आप लोगों के मैसेजेस को शामिल करते हैं जो कि हमारे लिसनर्स ने हमें भेजे हैं। तो क्या सूरत हाल है, क्या क्या मैसेजेस हैं, इसे हम करेंगे शामिल। लेकिन यार जरूरी यह है कि एक अदद ब्रेक, क्योंकि लाइफ में ब्रेक है जरूरी। तो एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस और फिर करते हैं आपके मैसेज को शामिल।
1: कूल किंग, बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: दिस इज द साउंड ऑफ योर क्लाउड बिल, दिस इज द साउंड ऑफ इट गेटिंग रीइंबर्स्ड। Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: FM 247 365। توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

जी तो आ गए हैं हम वापस और भाई मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास मेरे लिसनर्स के, तो जिसे हम करेंगे शामिल। भाई हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं आपके चैनल की वॉइस खराब हो गई थी, आज लंच में चपली कबाब और मटन पुलाव है। अरे वाह भाई, ये तो दावत का खाना लग रहा है, चपली कबाब भी मटन पुलाव भी, वेरी नाइस। अच्छा भाई हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं आई एम गुड, दाल चावल है इनके लंच में। कहते हैं आपके लंच में, आज मेरे लंच में चना पुलाव है। कहते हैं कल आपके लिसनर्स ने शो को बहुत एंजॉय किया। यस, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। ओके रशीद खान, विल ट्राई आर बेस्ट टू एड दिस ट्रैक। इसी के साथ साथ हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं प्लीज प्ले रहीम शाह सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग प्ले कर दें, लव यू लवली आरजे। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तभी आपका बेसब्री से वेट करते हैं। अरे वाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह आप हमारा इंतजार करते रहे, हम आपके साथ मौजूद होंगे मंडे टिल सैटरडे। कहती हैं इतना कम टाइम होता है, हल्की सी झलक दिखा कर आप गायब हो जाती हैं, दो घंटे के शो में सिर्फ 15 मिनट आपको सुन पाते हैं। नहीं यार ये तो नहीं कहो, ये तो ज्यादती, मैं तो इतनी सारी बातें करती हूँ। हालांकि मैं समटाइम्स ये कहती हूँ कि लोग कहेंगे कि भाई हमें तो कोई ट्रैक भी सुनना चाहिए, तो आरजे फातिमा बातें ही करेंगे, यार ये तो गलत बात है, ये तो नहीं कह सकते तुम लोग। कहती हैं 4 आवर्स का शो किया करें आप, ताकि हम आपको ठीक से सुन पाएं। 4 घंटे रियली? चलें जी, इस पर भी बात करेंगे कि 4 घंटे का शो अगर मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाए। लेकिन फिर मुझे लगता है कि 4 घंटे के शो में कहीं आप लोग बोर ना हो जाए, आप कहीं यार 4 घंटे आरजे फातिमा को सुनना है, क्योंकि भाई हमारे पास और भी बहुत सारे टैलेंटेड आरजेस मौजूद हैं। अभी आप कुछ देर बाद आरजे जैस्मीन को भी सुनेंगे, वो भी हमारे साथ होती हैं 2 से 4 के दरमियान, जो कि रिक्वेस्ट शो करती हैं, आपकी पसंद के ट्रैक्स को शामिल करती हैं। अब यार वो तो जैस्मीन का टाइम है ना, आई कांट टेक दैट टाइम। तो चलते हैं फिलहाल हम रहीम शाह के ट्रैक की जाने, वो आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद।

चार घंटे का शो तो यार जरा मुश्किल है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि भाई अगर चार घंटे के शो की बात बन जाए तो मजा ही आ जाए। ऑल राइट, कहती हैं कि मैं आपको पूरा दिन सुन सकती हूँ। अरे वाह भाई, यानी कि आप बोर नहीं होंगी। मैंने कहा यार पसंद तो सब करते हैं, लेकिन अगर एक ही इंसान को कंटिन्यूसली सुने तो कहीं बोर ना हो जाएं। लेकिन चलें जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। अच्छा भाई, इसी के साथ साथ कहती हैं आरजे जैस्मीन भी अच्छी हैं, लेकिन आप तो पूरी दुनिया में एक हैं। अरे वाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर। कहती हैं थैंक्स अ लॉट आरजे, आपने रहीम शाह का सॉन्ग प्ले किया। थैंक यू, एंजॉय करो भाई तुम। तुमने एंजॉय किया, मुझे खुशी हुई ये जानकर, दिल बाग बाग हो गया। अच्छा भाई, रशीद खान ने भी हमसे कहा कि सॉन्ग जो है वो आप प्ले कर दें, ये इनका फेवरेट है। तो ठीक है जी, हम इसे जल्दी से शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्त का मैं मुकाबला सख्त है। अभी थोड़ी देर बाद आप लोग मुझे एक मालूमाती प्रोग्राम में भी सुनेंगे। तो चलें जी, पहले इस ट्रैक को शामिल करते हैं, फिर आते हैं वापस।

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
7: वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल अपने अख्तितामी मराहिल के करीब आ चुका है। लेकिन डोंट परी, अभी भी बहुत सारी बातें जो हम भी करेंगे आप लोगों के साथ। तो भाई, आज है 9th of July और आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर हमने थोड़ी बात की, लेकिन थोड़ी है बाकी। तो सबसे पहले तो हमने आपसे ये कहा कि भाई सारे अंडे जो हैं वो अपने एक आमलेट में नहीं डालने हैं। ऐसा ये मैं नहीं कह रही, ऐसा आज का एक दिन मनाया जाता है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई आपने एक आमलेट में बहुत सारे अंडे नहीं डालने हैं। तो यानी कि आप अंडों की दीगर चीजें बनाएं, बॉयल एग्स खाएं, बॉयल एग्स आर सो गुड एंड वेरी हेल्दी, तो आप ये सब खाएं। और इसी के साथ साथ आज इंटरनेशनल इमरजेंसी किट डे मनाया जा रहा है, और ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो कि आपके पास होनी चाहिए। एक मेडिकल किट हम लोग बना रहे होते हैं, इमरजेंसी किट, ये सारी चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो बेसिक चीजें होनी चाहिए जिसकी आपको कभी भी नीड हो सकती है। तो अक्सर औकात आप इस तरह की चीजों को अपने बैग में भी जरूर कैरी किया करें। उमूमन तौर पर घरों में तो हमारी एक मेडिकल किट होती है, और मुझे मेडिकल किट का शौक तब हुआ था जब आई वॉज इन माई स्कूल, और हमारे स्कूल में हमें ये कहा गया था बनाने के लिए। सो उसके बाद से मेरी कोशिश होती है, मैं अक्सर अपनी अम्मी के लिए भी दवाएं लेने जा रही होती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चंद दवाएं जरूर खरीद लूँ, जैसे कि अगर अचानक से पेट में दर्द हो जाए या नजला खांसी जुकाम हो जाए। सो वो कुछ अद्वियात आपके घर में मौजूद होनी चाहिए फॉर अ सेफ साइड। तो ऐसी चंद आप चीजों को आपको रखना चाहिए अपने घर में, ये जरूरी है। भाई लंच में क्या है ये तो हमने आपसे जाना, लेकिन अभी बहुत सारे मैसेजेस बाकी हैं, तो जल्दी से मैसेज करें। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। अच्छा भाई, इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 34 है, जबकि महसूस किए जाने वाले दर्जा हरारत 36 है। कमी महसूस की जा सकती है कल और आज के बनस्बत में, क्योंकि आज से मौसम बेहतरी की जानिब जाने का था और कल मजीद बेहतर होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। कल जब मिलेंगे आपसे तो अच्छे मौसम की बात कर रहे हो हम कि यार आज कितना अच्छा मौसम है कराची का। तो पिकनिक का प्लान है तो कल का दिन इज अ वेरी गुड डे, आप प्लान कर सकते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन कल रश बहुत होगा तो ये भी आप देख लें। मशवरे में दोनों तरह के देती हूँ, एक वो जो आपके लिए ठीक हो और एक जो एक्चुअली हकीकत है, वो भी उससे भी आगाही फराम करना जरूरी है। चलो जी, बातें बहुत हो गई हैं, ट्रैक की जानिब भी चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

ओके, तो मैंने कहा भाई कम वक्त है तो चलो जी इस कम वक्त में भी एक अदर ट्रैक को शामिल कर लेते हैं और आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो भाई मौसम के हाल अहवाल हमने आपको बताया कि आज दर्ज हरारत कम है कल के बनस्बत, क्योंकि आज से मौसम में जरा बेहतरी की तवक्कात मौजूद थी। एंड द गुड थिंग इज दैट के हुआ ऐसा, दर्ज हरारत में थोड़ा फर्क नुमाया किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बल्कि नुमाया फर्क है। और इसी के साथ साथ कल मजीद बेहतर होगा।

है और इसी के साथ साथ कल मजीद बेहतर होगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कराची में अच्छी रहमत वाली बारिश हो जो कि हमारे लिए रहमत बने ना कि जहमत बने, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसी के साथ साथ जो भी इस वक्त हमारे करंट मसाइल हैं जिस पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो एक गैस का मसला है, एक बिजली का मसला है, एक कराची की सड़कों का मसला है, और दूसरी चीज ये भी है, तीसरी चीज बल्कि तो चौथी चीज हुई कि कराची में जरा ग्रीनरी का भी मसला है। और मुझे लगता है कि कराची में ग्रीनरी पर काम करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि दरख्त लगाए जाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब बहुत कम मकामात पर आपको कराची में ऐसी ग्रीनरी नजर आ रही है, दरख्त वगैरह नजर आ रहे हैं, वरना ऑल दो नहीं है। शारे फैसल पर मौजूद हैं लेकिन अब वो भी कुछ बेचारे सही हैं, कुछ कम हैं, तो मतलब इसमें भी जरा बेहतरी हो जाए तो कराची का मौसम जरा और बेहतर हो जाए क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। द थिंग इज दैट कि ये बहुत जरूरी है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कराची में भी ग्रीनरी हो, दरख्त लगाए जाए और इस अज़म की जानिब जो है वो जल्द अज जल्द जाना चाहिए, और ये बेहतरी अब कराची में काफी रिक्वायर्ड है। सो हमेशा की तरह उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम उम्मीद करेंगे शहर कराची की बेहतरी के लिए, और इसी के साथ साथ आपसे लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम, लेकिन अभी आपसे मेरी मुलाकात होगी कुछ ही देर में एक अदद मालूमाती प्रोग्राम में। तो सुनते रहे FM 100 पाकिस्तान, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
2: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
3: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
4: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
5: हमारी जिम्मेदारी है।
6: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So, janab, aaj hai Thursday, aur 9th of July. Aap sun rahe hain hamara show, aur aap logo batate chale ki request show hai. Aap log request kar sakte hain apne favorite tracks ke liye. facebook.com/archer.jasmine पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ facebook.com/fm247365 और साथ में आप लोग को बताते चलें कि आप लोग जो है 3636 पर भी मैसेज कर सकते हैं फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स. तरीकेकार बहुत ही आसान है, टाइप के HI लीव स्पेस देन आपका मैसेज, आपकी रिक्वेस्ट, और 3636 पर भेज देना है, यानी कि 3636 पर भेज देना है. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो, और मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पर.

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100. 100. 100. Listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100. 100. 100.
3: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
5: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
6: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
8: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
0: Listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100. 100. 100.
11: Genie in radio.

Hey Janelle, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर. तरीकेकार बहुत ही आसान है. Just type K Shahid and leave space. आपका message, आपका नाम, आपकी request. और उसे 3636 पर भेजना है facebook.com/rj.jasminebaby. आप जो है वो अपनी request हमें भेज सकते हैं और हमारे साथ share कर सकते हैं. अच्छा जी, हमारे पास नूर ने message किया है पेज पे facebook.com/rj.jasmine पे और उन्होंने request किया है चलते चलते बाय जल्द बैंड. ठीक है, हम जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और इसी के साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज आया है रुबाब का. वालेकुम अस्सलाम रुबाब, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं, आप बताइए आप कैसी हैं. एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड छेड़े मन के तार बाय नजम शिराज. ठीक है रुबाब, हम आपके लिए प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो 2:19 हो गए हैं. वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स रिक्वेस्ट ऑफ नूर और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है चलते चलते बाय जल. सो नूर, इफ यू आर लिसनिंग, योर सॉन्ग इज नाउ प्लेइंग. सो आप लोग मैसेजेस करते रहिए 3636 पे भी एंड facebook.com/rj.jasmine पे भी. राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स दिस ट्रैक. द ट्रैक इज चलते चलते बाय जल.

Alrighty, जनाब, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. शो का नाम है जीनी इन रेडियो और आप लोग हमें मैसेजेस कहना है 3636 पर. ओके, सो आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एक तो आपने बताना है कि आपको याद हो जो आपको पहली सैलरी मिली हो जब आपने काम स्टार्ट किया हो तो उसका सबसे यादगार खर्चा वो आपने कहाँ खर्च किया. आपने हमें बताना है किस चीज पर खर्च किया. लेट अस नो ऑन 3636 क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसा प्रेशियस मोमेंट होता है जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं एंड देन कुछ अपने मेहनत से कमा कर लाते हैं तो वो जो पहली कमाई होती है तो हम उसको बड़ा एक तो संभाल कर रखते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए. यू नो, अब चाहे वो कितनी भी हो, हम फिलहाल अभी इस अमाउंट को डिस्कस नहीं करेंगे. हम आज ये पूछेंगे आप लोगों से कि वो आपने कहाँ खर्च की, उसको संभाल के रखा, सेव किया, या कहीं अपने घर वालों को आप लेकर गए, अपने दोस्तों को लेकर गए, या अपने लिए कुछ खरीदा, या यू नो कोई छोटी सी दावत कर ली दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ. खर्च कहाँ किया आपने वो हमें बताना है मैसेज करके 3636 पर, या आप चाहें तो हमें facebook.com/rz.jasmine पे भी इनबॉक्स करके बता सकते हैं कि वो आपने पैसे जो है कहाँ खर्च किए हैं. और कुछ लोग होते हैं कि भाई बहुत संभाल के रखते हैं क्योंकि वो उनकी पहली कमाई होती है तो वो सोचते हैं कि चलो इसको खर्च नहीं करते, इसको सेव कर देते हैं, यादगार एक रहेगा. तो ये आपने बताना है हमें मैसेज करके 3636 पर. एंड आप चाहें तो facebook.com/rz.jasmine पे भी हमें इनबॉक्स कर सकते हैं कमेंट्स और आप बता सकते हैं. सो मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द रिक्वेस्ट ऑफ रुबाब. द ट्रैक वॉज छेड़े मन के तार. वापस आते हैं इस गाने के बाद, फिर आप लोग के मैसेजेस मजीद शामिल करते हैं. हमारे साथ रहेगा. द ट्रैक इज छेड़े मन के तार.

0: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: कूल किंग, चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। विद येलो बाय जैस कैश।

Alrighty, Janab. Welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. So, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट आपको याद हो पहली सैलरी जो है आपने कहाँ खर्च की और आपने बताना है कि क्योंकि वो एक ऐसा यादगार लम्हा होता है कि एक तो आपको खुशी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए होते हैं खुद से. तो ज़ाहिर है जब आप खुद से पैसे कमाते हैं तो फिर आप उसको खर्च करते हुए भी सोचते हैं क्योंकि नहीं यार हमने बड़ी मेहनत से कमाए, हमने ना ऐसे ऐसे खर्च करना है, इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे, यू नो. सो लेट अस नो ऑन 3636 एंड facebook.com/arjun.jasmine पे आप बता सकते हैं. और काफी सारे मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास जो है बिल्कुल आ रहे हैं. और मैंने कहा था कि पेज पे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, पहले भी आ रहे थे और अभी और ज्यादा आने शुरू हो गए हैं. पहले हम एक काम करते हैं, 3636 से मैसेज पढ़ लेते हैं. हमारे पास मैसेज आया है रीमा का. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं. उन्होंने लिखा अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमामीन. और यार दुआ करो बस जल्दी से गला भी ठीक हो जाए, यू नो फ्लू वायरल जो फैला हुआ है उसकी वजह से गला ज्यादा सही नहीं है. और बहुत सारी दुआएं आपके लिए और बहुत सारा प्यार. थैंक यू सो मच रीमा मेरी जान, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एंड समी शेख ने हमें मैसेज किया है और वो कहते हैं अच्छा आपकी रिक्वेस्ट कल प्ले नहीं हुई थी. हाँ यार मैंने बताया था काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट कल रह गई थी, हम जरूर प्ले करते हैं. अच्छा मुझे ऑप्शन में समी शेख थोड़ा मैसेज करके बता दो यहीं पे कि अगर ये ट्रैक ना हो तो कौन सा प्ले करें, ठीक है. और मैंने अपनी पहली सैलरी घर पे दी थी और अपने दोस्तों को जॉब की पार्टी दी थी. यार ये बड़ा सीन होता है पता है कि आपके दोस्त सबसे पहले बोलते हैं भाई सब छोड़ो ट्रीट दो, ट्रीट कहाँ है, यू नो हमें ट्रीट चाहिए. थैंक यू सो मच समी शेख. अच्छा हम क्या करते हैं भाई, पहली सैलरी आई है ना, चलो अब एक काम करते हैं आधी सैलरी घर पे दे देते हैं और चलो आधी सैलरी से दोस्तों को दावत करा देंगे, ये भी अच्छा सीन होता है, सही है. और आपने बिल्कुल मैसेज करके हमें बताना है 3636 पर और पेज पे भी बता सकते हैं. अच्छा समी मुझे दोबारा से ना अपना वो बता दो, कोई दूसरा अगर ट्रैक है ऑप्शन में तो मुझे वो बता दो, सही है. सो आज हम यही आप लोगों से बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी पहली सैलरी जो है यानी पहली कमाई जो आपने खुद कमाई अपने तौर पे अपनी मेहनत से वो आपने कहाँ खर्च की थी, आपने उसको खर्च किया था, आपने उसको सेव किया था, आपने उससे अपने घर वालों को आपने दावत कराई थी, अपने दोस्तों को दावत कराई थी, आप बता सकते हैं हमें मैसेज करके. या आपने अपने लिए कुछ ऐसा खरीदा था जो आप काफी टाइम से खरीदना चाह रहे हो लेकिन आप ज़ाहिर है बंदा सोचता है कि चलो यार जब पैसे आ जाएंगे हमारे अपने हम खुद खरीदेंगे, तो आपने कोई अपने लिए चीज खरीदी थी, लेट अस नो. मीनवाइल हम जा रहे हैं एक और ट्रैक की तरफ. हमारे पास नाजिश की रिक्वेस्ट आई थी एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड डिस्को दीवाने. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

0: Radio.
1: Welcome back, guys. आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें मैसेज करें 3636 पर. अच्छा, हमारे पास निदा का मैसेज आया है. निदा ने कहा है प्लीज प्ले द ओएसटी ऑफ रंग महल. कल भी रिक्वेस्ट किया था, आपने प्ले नहीं किया था. अच्छा निदा, सॉरी यार, मैंने कल एक तो जल्दी साइन आउट किया था और मैंने कल इसलिए सबसे अपोलोजाइज किया था कि जिनकी रिक्वेस्ट रह गई आज जरूर प्ले करेंगे. सो यू आर लिसनिंग राइट नाउ. तो हम आपका जो ओएसटी आपने रिक्वेस्ट किया है रंग महल का, वो हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं. मिलते हैं इस गाने के बाद, जल्दी से जाते हैं. निदा सुनते रहिए और मुझे मैसेज करके बता दें पेज पे कि आप सुन रही हैं.

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365 Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Alrighty, so now welcome back to Afternoon FM 100 Pakistan and aap log hamare messages karne 3636 per and it's 47 minutes past 2 on the dial right now and ठीक है समी शेख मैं आपका ये सॉन्ग देख लेती हूँ आई डेफिनेटली ट्राई मरियम अंजबीन ने हमें मैसेज किया है हेलो मरियम लॉन्ग टाइम यार इतने टाइम बाद आप पेज पर मैसेज कर रही हैं मुझे सो उन्होंने लिखा माय फर्स्ट सैलरी वाज 35,000 एंड आई बॉट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर माय पेरेंट्स एंड अ केक फॉर माय फैमिली टू सेलिब्रेट द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी नथिंग एक्सपेंसिव बट फिल्ड इट विद लव एंड मेमोरीज दैट्स सो स्वीट यार दैट्स सो स्वीट सीरियसली Thank you so much for your message. और उन्होंने मैसेज उससे पहले किया हुआ हाय जैस्मिन आई एम ऑन लीव फ्रॉम वर्क टुडे एंड आई एम रियली एंजॉयिंग योर शो आई रियली विश यू हैड अ वीकेंड शो यार अरे यार चलो कोशिश क्या करो अगर वीकडे में टाइम मिले तो सुन लिया करो मुझे मैसेज कर दिया करो ठीक है कोई ट्रैक सुनना है मरियम तो मुझे आप मैसेज करके बता दो Okay, it's 49 minutes past 2 on the dial right now. हमारे पास हिबा का मैसेज आया है पेज पे एंड कहती है शो बड़ा जबरदस्त है आपका थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया और कहती है मैंने अपनी पहली सैलरी जो है वो खर्च ही की थी सेव नहीं कर सकी लेकिन उससे घर वालों को खाना खिलाने लेके गई थी उसके बाद पर दोस्तों को भी खाना खिलाया था दोस्त कैसे पीछे रह सकते हैं यार ओके शी हैज रिक्वेस्टेड for the song called Husn Walo by Junoon. Okay. Theek ho gaya hai ba. Thank you so much for your message. So, agar aap sun rahi hai, to abhi hum aapka track jo hai, wo play kar rahe hai. और मैसेजेस करते रहिए आज हमारे शो का टॉपिक है कि आपने अपनी पहली सैलरी जो है वो कहाँ खर्च की थी ठीक है आपने बताना है उसको सेव किया था या उसको खर्च किया था तीन छह पर मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं और facebook.com/rj.jasmine पे भी आप बता सकते हैं हमें मैसेज करके सो मीनवाइल दिस ट्रैक इज हुसन वालो बाय जुनून और ये हिबा के लिए है

0: Station Radio. Radio.
1: Genie in radio.

0: Alrighty, now welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर एंड पेज पे भी आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं facebook.com/rjasmin पे आप अपना हमें मैसेज भेज रहे हैं. ओके सो हमारे पास मैसेज आया है वसीम का. वालेकुम सलाम वसीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं. और कह रहे हैं कि मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से मोबाइल खरीदा था. नाइस यार, कह रहे मुझे स्मार्टफोन खरीदना था, मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास कुछ पैसे जमा भी थे पहले से और फिर मेरी जब फर्स्ट सैलरी आई तो फिर मैंने उससे फोन खरीदा था. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है ओएसटी ऑफ द ड्रामा तेरे बिन. ठीक हो गया है, हम जरूर प्ले कर देंगे. वसीम आपके लिए बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. फैजान ने मैसेज किया है नाइस वॉइस जैस्मिन, एक सॉन्ग अहमद जहांजेब का प्ले कर दीजिए एक बार कहो. ओके फैजान, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, आपके लिए हम सॉन्ग प्ले कर देंगे. सो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट आप लोगों ने अपनी पहली सैलरी जो है वो कहाँ खर्च की थी, सेव की थी, खर्च की थी, आप बता सकते हैं facebook.com/rjasmin पे 3636 पर मैसेज करके भी बता सकते हैं. अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पर.
1: Let the music take control. Let the music take control.

Radio. Alrighty, so now welcome back after FM 100 Pakistan and aap log hamein messages kar rahe hain 3636 per. Faizan ne hame request kiya tha ek bar kaho play kar dijiyega Ahmed Jahan Zeb ka, theek hai hum zarur play kar denge. Jaipal ne message kiya hai, hello RJ, hello Jaipal, mere paas tum ho ka OST play kar dijiyega Raat Fateh Ali Khan ka and thank you. Okay, you're most welcome Jaipal. जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. अभी हम जा रहे हैं फैजान की रिक्वेस्ट की तरफ विच इज एक बार कहो बाय अहमद जहाजेब और साथ में टॉपिक अनाउंस कर दें फॉर दोज हु हैव जस्ट ट्यून्ड इन. आज हमारे शो का टॉपिक है अबाउट के पहली सैलरी जो है आपकी जो पहली कमाई थी वो आपने कहां खर्च की थी. आप हमें बता सकते हैं उसे कुछ खरीदा था या उसे खाना खाया था, खाना खिलाया था. लेट अस नो ऑन 3636 या उसको सेव किया था. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: Let the music take control. Control.
5: Let the music take control.
4: That is FM 100 Pakistan. This is

0: Radio.
1: जी जनाब, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग मैसेजेस बिल्कुल कर रहे हैं 3636 पर. और जयपाल, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट हम थोड़ी देर में प्ले करेंगे. शाहिद ने मैसेज किया है हमें, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज प्ले आपसे मिलके सॉन्ग बाय नुसरत फतेह अली खान. आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, ठीक हो गया है जनाब. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड रीमा ने हमें मैसेज किया है, वाओ वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम रीमा, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया. सो 3:00 हो गए हैं 19 मिनट और हम लोग 4 बजे तक आप लोगों के साथ हैं, 4 बजे से थोड़ा पहले. और तो जल्दी जल्दी मैसेज करें पेज पे भी और 3636 पर भी. और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट योर फर्स्ट सैलरी, जहां आपने खर्च की हो, यानी अपनी पहली कमाई कहां खर्च की थी, उससे क्या खरीदा था. और आप बता सकते हैं मैसेज करके, या आपने उसको सेव किया था. अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनकी फर्स्ट सैलरी होती है पहली कमाई, तो वो उसको खर्च नहीं करते, वो कहते हैं हम इसको सेव करेंगे और इसको मतलब बिल्कुल ही खर्च नहीं करना. मतलब जो नोट मिलते हैं ना, उस नोटों को खर्च ही नहीं करना है. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं. सो आप बता सकते हैं हमें पेज पे भी और 3636 पर भी. अच्छा, पेज पे भी हमारे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं. मरियम अंजबीन ने हमें मैसेज किया है और लिखा है, अच्छा उनका मैसेज तो हमने पढ़ लिया था, दोबारा उन्होंने हमें मैसेज किया है, आई लाइक द वे यू प्रोनाउंस माई नेम. यार, मैं शुरू से, जब से आप मेरी लिसनर हो, तब से मैं आपका नाम ऐसे ही बोलती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. चले, आपको अच्छा लगता है ना मैं जैसे प्रोनाउंस करती हूँ, आप खुश तो मैं खुश, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज मरियम. एंड बिलाल ने हमें मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम, और बिलाल ने कहा है, मेरी जिंदगी है तू का OST प्ले कर दीजिएगा. पहली सैलरी जो है वो मैंने खर्च नहीं की थी, मैंने अपनी अम्मी को दे दी थी और वो उनकी मर्जी थी, वो जो भी करें उसका. ओके बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, सो मीनवाइल हम जा रहे हैं शाहिद की रिक्वेस्ट की तरफ. इट विल बी फॉलोड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ जयपाल. हमारे साथ रहिए. द ट्रैक इज आपसे मिलके बाय नुसरत फतेह अली खान साहब.

0: Genie. Genie in radio. Radio.
1: KHI space your text message. Send it to 3636.
2: Some are born to lead. Welcome to FM 100.
3: Cool King.
4: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: अगर आप है ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Like us on facebook.com/fm247365
4: FM247365 Genie in radio.

Alrighty, Janelle, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड मैसेजेस हमारे पास जो है वो काफी सारे आ रहे हैं 3636 पर. एंड साहिबजादा ने मैसेज किया है, कह रहे हैं अब तो याद भी नहीं रहा कि पहली कमाई कहाँ खर्च की थी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. समवन हैज टेक्स्टेड इन, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है. उन्होंने कहा है टॉपिक के हवाले से, आईफोन गिफ्ट किया था अपने फ्रेंड को और शो अच्छा है आपका. वाह यार, जबरदस्त भाई, ये भी सही है. ओके, हमारे पास जयपाल ने दोबारा से मैसेज किया है, कह रहे जॉब नहीं है हमारा, अपना बिजनेस है. हाँ तो यार, बिजनेस के हवाले से भी बता सकते हैं, जब आपने स्टार्ट किया होगा अपना कारोबार तो आपको मुनाफा हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, तो उसका आपने क्या किया, सबसे पहला प्रॉफिट जो आया होगा जाहिर है आपकी कमाई तो हुई होगी बिजनेस से भी, अपने कारोबार से भी, तो आपने उससे क्या किया था, मैसेज करके बता सकते हैं. उसको सेव किया या उसको किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया, क्या किया था आप मैसेज करके बता सकते हैं 3636 पर. मीनवाइल जयपाल के सॉन्ग की तरफ जा रहे हैं हम. द ट्रैक इज मेरे पास तुम हो, ठीक है, ओएसटी है ये. यार ये हमने निकाला था सॉन्ग, ये रहा ओएसटी. दिस ट्रैक इज फॉर यू बाय राहत फतेह अली खान. जयपाल, ये ट्रैक आपके लिए, और समी शेख, मैं आपके लिए एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दूंगी थोड़ी देर में.

Jeez, now welcome back up on FM 100 Pakistan, and it's 37 minutes past 3 on the dial right now. Or aap log hame messages kar rahe hain 3636 par and facebook.com/orchid aur jasmine pe bhi aap hame messages kar rahe hain. Aur Sami Sheikh, aapne mujhe kaha hai ki main apni pasand ka koi song play kar dun, to main aapke liye bilkul play kar dungi. Thank you so much for your message. And we have got a message here from Malik Yusuf. Walaikum assalam, main bilkul theek hoon, aap bataiye aap kaise hain? Unka show aapka acha hai. Aur फर्स्ट सैलरी में मैंने अपने लिए, अच्छा ये कह रहे हैं कि कुछ कपड़े खरीदे थे जो मैं काफी टाइम से खरीदना चाहता था लेकिन नहीं खरीद सका था. हाँ यार, ऐसा भी होता है कि ज़ाहिर है बंदा वेट कर रहा होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आप सोच रहे होते हैं कि ये जब हम खुद से कमाएंगे, हमारे पास अपने पैसे होंगे तो हम खुद खरीदेंगे. और ये चीज़ एक आपको यू नो इंडिपेंडेंट फील, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि हाँ सही है, ठीक है, अब हमारी कमाई अपनी खुद की है, हमने खुद पैसे कमाए तो अब अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कि ना कोई रोक टोक करेगा कि ये चीज क्यों ली या ये पैसे इधर क्यों खर्च किए. तो एक आप भरम के साथ जो है, हाँ ऑल्दो पैसे ज्यादा खर्च करना या फजूल खर्च करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन स्टिल आपको एक यू नो भरम होता है कि हाँ ये हमने खुद कमाए हैं, चलो हम अपनी मर्जी से चीजें ले सकते हैं. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर ट्रैक. क्योंकि हमें समी शेख ने कहा था कि आप अपनी पसंद का कोई अच्छा सा ट्रैक प्ले कर दीजिएगा, तो ये मैं प्ले कर रही हूँ. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट, ना कहो बाय आरओ. मुझे गाना बड़ा पसंद है. सो समी, इफ यू आर लिसनिंग, चला दिया हमने गाना.

0: space your text message. Send it to 3636.
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें. फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए. याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है. आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके. पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना. याद रखिए, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता. लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें. और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें. अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें. व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें. इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं. बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbb.org.pk पर विजिट करें. याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी.
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
0: facebook.com/fm247365 fm247365.
6: Genie in radio.

Alrighty, everyone, welcome back. So, आप सुन रहे थे FM 100 पाकिस्तान पर जीनी ना रेडियो, क्योंकि अब टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म पर है. सो आप सबका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टेक्स्ट सेंडर्स आउट देयर, जिन्होंने पेज पर मैसेज किए, जिन्होंने 3636 पर हमें मैसेज किया. और आज हमने बिल्कुल पूरी कोशिश की.

0: 107.365 FM 100
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
0: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान
2: इट्स 24 आवर्स नॉनस्टॉप वाइब्रेशन connecting you
3: connecting
2: holding you
3: holding
2: with FM 100
4: FM 100 FM 100

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365 Back to back, back to back. Only music, no art to talk.
5: Only music, no art to talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका, तो फिर देर कैसी? क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: आश बिस्पगोल डेली लो फिट रहो.
1: This program is brought to you by
2: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
4: And Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे. होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: कूल किंग हेयर ऑयल. जैसे चलता फिरता एसी.
3: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
4: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
5: ऑलवेज रिमेम्बर, पेरेंट्स आर पाकिस्तान्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. यू आर डिसाइसिव फॉर अ ड्रग फ्री सोसाइटी.

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: कूल किंग,
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो

0: आज भी इस्तेमाल डेली लो फिट रहो।
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।

0: थिंकिंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कोई क्रीम वाकई आपके जल्द का कुदरती रंग तब्दील कर सकती है? मेरा नाम डॉक्टर सादिया तबस्सुम है। मैं बहैसियत कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। हम ये जानेंगे कि व्हाइटनिंग क्रीम्स में कौन से अज्जा शामिल होते हैं, ये हमारी जल्द को क्या फायदा या नुकसान पहुँचा सकते हैं। लिसन टू द एक्सपर्ट सीरीज में बरोज जुमा 10 जुलाई हमारे साथ रहिए।
3: ये पैगाम एक्को लेबोरेटरीज और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी के तावन से नशर किया गया है।
4: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर। Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
2: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
3: इन्वेस्ट पार्क?
4: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
3: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
3: दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात ढाई हजार
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
5: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसे अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसे अकाउंट में 5000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसे डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
0: This program is brought to you by
7: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
1: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
8: तूफान है हर जीत की पहचान है
0: 100 FM
9: हाय फ्रेंड्स आई एम विकास ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham, Hukumat-e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. Like us on facebook.com/fm247365
10: fm247365 100 100

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: Cool King.
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तैद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
8: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
6: कूल किंग. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर

0: से आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
1: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसे अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसे अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइवर पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो।

0: कश्मीर स्पिगोल डेली लो फिट रहो
1: कूल किंग। बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: तूफान है
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे। होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
7: FM 247365
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: तूफान है।
4: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर रابطہ।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस मैयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
7: facebook.com/fm247365
8: All right, Ray friends, coming in with the track by Nitla Shah, and of course, Papa Memos, so stay tuned to the airwaves. It's all about Dil Kamla. Thank you so much for joining in.

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Cool King.
3: Bijli ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. लेकिन बीपी हाई.
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. With Yellow by Jazz Cash.

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: डेली लो, फिट रहो।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी
10: की तहकीक की, बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मुहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मुहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद न करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
13: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
14: FM 24/7 365 FM 24/7 365.

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. This program was brought to you by
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: Club Mixes.

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बंद।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: This public service message is brought to you by FM 100. ٹریفک قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔
5: FM 100.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
3: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कर। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: facebook.com/fm247365
6: All right, friends, I'm going to be taking you down memory lane 2008 for us open with Yada.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/FM247365

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
4: FM 100 like us on Facebook.com/FM247365
5: FM 100
6: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: Back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतर इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स AML वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: FM 247/365

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 1 a.m.
1: This is your music.

닥쳐가야 얼추 포가야 왜 닥쳐가야 얼추 포가야 왜 닥쳐가야 얼추 포가야 왜 닥쳐가야 얼추 포가야

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब याकाम, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलांग, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.

कोई है जो आवाज देता है, कोई है जो हर दिल में रहता है, कोई है जो आसमां से पानी बरसाता है, कोई तो है जो अंधेरों से उजाला करता है, कोई है जो आवाज देता है, कोई है, कोई है।

जब हो जाती है एक खुशबू सी फैल जाती है, परिंदे चहचहाते हैं, प्यार भरी गीतों से जग को फिर जगाते हैं, हर तरफ से एक ही सदा आती है और हमको ये समझाती है, कोई है जो आवाज देती है।